0: गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदा जी गुरुदेव की जय।

जय देवाधिदेव श्री देवापुरुष महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद।

जय देवाधिदेव श्री देवापुरी जी महादेवा की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री परहंस श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। सबक मंडल की जय। Okay, one more. One. Satam Guru Rakhman.

हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।

0: अनंत ब्रह्मांड की रचयिता, सृष्टि के पालनकर्ता, घट घट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। परम श्रद्धेय परम आदरणीय पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय हमारे घनिष्ठ मित्रों में हमारे घनिष्ठ प्रिय गुरु भाई और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्री हरिचंद्र जी महाराज की परम कृपा से आज हमारा यहां आना हुआ। पूज्य स्वामी जी की कृपा से हम सभी लोगों को जो विशेष करके भारत से आए हुए हैं अभाग्यशाली हैं कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय पूज्यपाद का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। आपका बहुत प्रेम है और प्रेम ही सबसे बड़ा है। प्रेम छुपाया न छुपे प्रेम करे प्रकाश, दाबी दुबी रहे नहीं कस्तूरी की बास। तो प्रेम कभी छुपता नहीं, तो उसी प्रेम के साथ में उसी प्रेम वाणी से आज हम कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे योग के बारे में। पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री ने योग की महिमा गागर में सागर भर दिया। योगा कर्म सुकौशलम, योगा अग्नि कर्म दग्धानी। योग के बिना मानव का जीवन सफल नहीं होगा। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, गुड इवनिंग। आई हैव टू स्पीक नाउ लिटिल बिट इन इंग्लिश बिकॉज अवर भक्तास फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम विथ मी एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो वुड लाइक टू हियर व्हाट आई एम telling or talking. You all speaks English very good because you live in America. And Swamiji need not to understand because he is in his inner dhyan mein sab kuch mil jata hai. He knows what I am saying, that's enough. Theek hai na?
1: Perfect.
0: और उसमें अगर हम कुछ गलती करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा।
1: नहीं,
0: हमारे लिए समथिंग। थैंक यू। योगा, योगा कर्म सुकौशलम, कर्म के द्वारा हम योग की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराजा भर्तृ, when he became a sannyasi, he renounced everything. Then he said, I would like to pay my respect to all devas, all goddesses. But then he said,

मन का देवता चंद्र, दैट्स वाई बिसाइड मी हरिश्चंद्रपुरी जी महाराज। देखिए वो हमारे देवता है, ही इज कंट्रोलिंग। इसीलिए तो ऐसे महान पुरुष पास में बैठते हैं तो हमारे को सावधानी से बोलना पड़ता है। एवरीथिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द माइंड इज द मून, एंड मून इज एवरी डे व्हेन मून कम्स आउट और मून राइजेस नेवर इक्वल। चंद्र हमेशा एक सरीका नहीं आता है, घटता बढ़ता रहता है। वैसे मन जो है संकल्प विकल्प करता रहता है, यही मन का धर्म है, क्योंकि मन चंद्र से मिला हुआ है। एंड मून मीन्स इमोशन, इन मोशन, यू आर ऑल द टाइम्स इन द मोशन, इमोशन, एंड इमोशन मीन्स वाटर। सो चंद्र जो है पानी का प्रतीक है, और वो जल जो है पानी वाटर, वो वाटर इज चंचल मूविंग, देर आर द वेव्स, सो यू आर इन द मोशन इज द इमोशन। बट व्हाट काइंड ऑफ अ मोशन यू हैव, सम टाइम इज ए हॉरिकन, अरे वाह फ्लड है। राजा योगी अग्नि जल, जिसकी उल्टी रीत। राजा योगी अग्नि जल जिसकी उल्टी रीत। सावधान से परशुराम जी कह रहे हैं कि थोड़ी देखे प्रीत, इनसे आप ज्यादा दोस्ती मत करना। राजा भी ठीक है, कभी होते होते वो लगा देता लात। हाँ वो नेता होता है ना, नेता तो टिकट की समय तो आएंगे, हाँ बाबूजी कैसे हो, भाई साहब कैसे हो, ऐसे है। जीत गया उसके बाद तो हाथ नहीं मिला था, क्या टेलीफोन भी नहीं मिला था। ये बातें होती है माइंड। नाउ व्हाट इज द माइंड? सो माइंड हमारा जो है, माइंड इज लाइक ए कैमरा, इज गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन and transferring to the subconscious. And what is the hidden written in the subconscious brings up and gives to the consciousness, intellect, buddhi. And what is a buddhi? Buddhi ka dharma kya hai? Buddhi ka dharma hai uska judgment dena. So intellect gives the judgment and mind brings and goes. Therefore mind has no responsibility. It's only coming and going, coming and going, coming and going. So that is a mind. Intellect is giving judgment, but viveka, that is which leads us further. So yoga, आसनास, प्राणायाम, चक्राज, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्रार, दिस आर द एट चक्राज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी। तो योग अनंत है, अनंत हरि कथा। साथ में आता है आसन, आसन प्राणायाम, ध्यान, धारणा। तो आसन कई प्रकार के आसन कहलाते हैं। ये महाराज श्री का जो ये गद्दी बिछी हुई है, इसको भी आसन ही कहते हैं। महाराज जी आपके आसन पे बैठिए, वो भी आसन है। आपका आसन कहाँ लगेगा, रात को सहन कहाँ करोगे, वो भी आसन है। और पोस्चर्स जो है वो भी आसन है। आसन की परिभाषा बहुत कुछ है, लेकिन मेडिटेशन करते समय काया

0: Therium, motionlessness of the body. Motionlessness of the body, फिर meditation होता है. ये गिलास पड़ी है, गिलास के अंदर पानी है, गिलास स्थिर है, पानी भी स्थिर है. Glass is motionless, the liquid inside is also motionless. But as soon as I take, glass is moving, liquid is moving. Similarly, if our body is comfortable and motionless, our mind is also steady. Sankalp vikalp ke andar mein dheere dheere dheere dheere dheere dheere aata jata hai, phir man meditation ho jata hai. So that's a long way. आसन. अब आपको थोड़ा सा बता दूंगा, नहीं तो स्वामी जी कहेंगे बाबा जी को माइक दिया और पता नहीं कब तक पकड़े रहेंगे. तो अब बस हो गया पूरा. धीरे से आपको कुछ बताता हूं. सभी बैठे हैं. अरे आए तो खाली बातें करने से कोई भूख थोड़ी मिलती है, मिटती है भूख, मिटते क्या? बातों से भूख नहीं मिटती है, बात करने से पेट नहीं भरता है. टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग, टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग कंपेयर्ड विद द ग्रेम ऑफ प्रैक्टिस. तो खाली बातें करते जाओ, बातें करते जाओ, पेट नहीं भरेगा. अरे कुछ खाने को तो दे, एक भी चना दे दो तो कम वो पेट में जाएगा तो कम से कम वो तो थोड़ा काम करेगा ही. भूखे को बताते जाओ कि हाँ श्रीखंड आ रहा है, ओहो हलवा आ रहा है, पूड़ी आ रही है, और क्या आ रहा है, अरे समोसे आ रहे हैं, लड्डू आ रहे हैं, अरे जलेबी भी बन रही है. वो भूखे के बेचारे के पेट के अंदर में आवाज हो रही है बादल की तरह, लेकिन आया क्या? कुछ नहीं आया. डपोट संघ का नाम सुना आपने? आप लोगों ने डपोट संघ का नाम सुना? महाराज जी आपने सुना?
1: नहीं अभी तक नहीं सुना.
0: सुना दूं? हाँ देखिए ये भी तो बात है. हमारे मारवाड़ में, गुजरात में, हिंदुस्तान में कहते हैं डपोट संघ. कावत है कि नहीं? तो डपोट संघ की बात कर देता हूं, फिर आपको फिर प्रैक्टिकल दे दूंगा. ठीक है, एक आई एम ट्रेलिंग इन हिंदी, ओके, so that after you will, I will tell you next time. So to cross, I will make something commentary very quickly so you will understand. एक गरीब आदमी था, गरीब था, काम तो करता है लेकिन पैसे इतना नहीं मिलता है. तो उसकी पत्नी को उसने कहा कि आप ऐसा करो, यहां जो कुछ ये पैसे देता हूं काम करना, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरे को बहुत कुछ पैसे दे देंगे. समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का प्रार्थना कर रहा है, ओम नमः शिवाय. भगवान शिव जी तो भोलेनाथ है ना, सबसे जल्दी वरदान कौन देता है? शिव. नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः.

ओह शंकर भगवान प्रकट हो गए जल के अंदर। बोलो भक्त क्या चाहिए, कि आप अगर शिव जी हैं तो आप अंतर्जामी सब कुछ जानते, मेरे को क्या कहते हो कि क्या चाहिए। प्रभु दे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूं और आप देने के लिए प्रकट हुए हो। अच्छा भक्त, तू मेरा भक्त है, ये शंख लेके आया हूं। ये शंख इतना चमत्कारिक है, ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, हे दीन दयाल, क्या कहना है। आपकी माया, शंकर भगवान महादेव की माया है ये, क्या करेगा ये। अरे भगत, इस शंख की पूजा करना, गंगा जल से धो लेना या पानी से, कुएं का पानी से धो लेना, और अगरबत्ती लगाना, फूल पुष्प चढ़ाना, और फिर कहना कि हे शंकरदेव, मेरे को 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 1000 रुपये का नोट आ जाएगा। हे शंकरदेव, मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है, तो हमारे सभी के लिए बना बनाया कैटरिंग आ जाए, जैसे आ जाएगा। तो कहा कि हाँ वो आ जाएगा, कि हे प्रभु कृपा कर दी, कपड़े भी मंगा देंगे, सोना दागिना भी मुला, सब जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा बेटा। बस प्रभु यही चाहता था। भगवान शिव अदृश्य हो गए, और क्या हुआ कि वहां वो शंख लेकर के गांव की तरफ, घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते 4-5 दिन के बाद, आइए 4-5 दिन के बाद में कोई गांव आया, उसके बाद दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मित्र। भाई देखो, कभी परीक्षा जब भी होती है कि मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं। हमारे ग्रंथों में कहा है, धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोंचारी। धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोंचारी। अरे एक मित्र की परीक्षा जब होती है, नारी की परीक्षा जब होती है, धीरज की परीक्षा जब होती है, कि हम किसी न किसी संकट में है, तो दोस्त के वहां गया। तो दोस्त कहा, अरे भाई बहुत समय से आए, क्या बात है, कहां चले गए थे, कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव मिल गए। अच्छा शंकर दादा मर गया क्या। हाँ मर गया बापू, तो शू गया शंकर दादा ने, शू कही लाडवा खवाड़े शंकर दादा बहु। अच्छा अरे ऐसे ही है, देवी देवता क्या करते हैं, देंगे हैं क्या। अरे शंख दिया है कि बताओ। हे शंख भगवान, हमारे मित्र के घर के अंदर सभी मिलकर के 8 और मैं 9, सभी के लिए अच्छा बढ़िया ताजा स्वप्न भोग थाल में पुरसा हुआ लेके भिजवा दीजिए। आ गया। अरे वाह, कपड़े मंगा दिए, आ गए। 50,000 मेरे मित्र को देना चाहता हूं, आगे। मित्र कहता कि हाँ भाई, ये तो चमत्कारिक चीज आ गई। भोजन किया, सो गए। अब वो रात को नींद नहीं आ रही है, किसको, मित्र को, कि मैं कैसे करके उस शंख को मैं ले लूं। गया दूसरे दोस्त के पास, कहीं रात को दुकान पे गया और एक इतनी साइज का एक शंख लेके आ गया। आ करके वो थका थका था वो भगत, तो क्या किया उसने कि उसकी थैली में से वो असली शंख को तो निकाल दिया, और वो जो नकली से लेके आया उसको उसके धोझोली में डाल दिया। 10-20 घर का वहां शंकर भगवान के दिया हुआ शंख को वहां टेबल पे रख करके पूजा करी। हे शंख भगवान, हमारे भाई बहन जितने सभी खड़े मेरे गांव के, सभी को पहले भोजन करा दो। कुछ नहीं। अरे शंख भगवान कराओ ना, क्या कराए। और वो इतना निराश हो गया, वहीं से शंख को लेकर के गया समुद्र के किनारे, और शंकर भगवान को कहा, ये तेरा शंख मुझे नहीं चाहिए।
भगवान शिव ने कहा, अरे मेरा भगत, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, भगवान नहीं चाहता कि भगत दुखी हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, वापस बोला, हे भगवान भगत, क्या मुझे नहीं चाहिए आपका संख? अरे बेटा, तेरा संख वो चुरा गया, तेरा दोस्त असली उसके पास है, नकली अंदर डाल दिया। तो मैं क्या करूं अब? क्या करे क्या, मैं दूसरा संख देता हूं। अरे वो क्या करता है संख? अरे उसमें तो चमत्कार डबल है बेटा, कि वो क्या है भगवान, कि मांगना 1000 रुपया तो वो कहे 1000 से क्या 1 करोड़ ले लो ना, अभी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, लेके जाओ, लेकिन सावधान, देता कुछ नहीं है, वो केवल बोलता है। शंख बोलता है 1000 रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये ले लो, 1 ड्रेस की जगह वो कहता 10 ड्रेस ले लो। के लाओ देओ कि क्या धक्का दे, धक्का को समझते हो, किसी को धक्का देना ना, अरे तू क्या नहीं दे रहा है कि नहीं, मेरा नाम है डपोल संख। अब वो लेके गया वापस दोस्त के पास, गया रात्रि विश्राम किया। अरे दोस्त का कैसे आ गया इतना जल्दी? बोला कि भाई इस बार तो एक चमत्कारिक चीज और मिल गई। अरे वो क्या है? अरे मांगे 1 और दे अनेक। कि यह ऐसे कैसे हो सकता है कि देखिए, हे शंकर भगवान, आज हमारे घर के अंदर 10 किलो सोना आ जाए। तो भगवान शंखदेव कहते, अच्छा भक्त आशीर्वाद है, लेकिन 10 किलो से क्या होगा, 1 टन सोना ले लेना, ले जाओ, 10 सोना आ जाएगा। कि बस बस बस बस इतना ही चाहता था, भगवान उसको दे दिया। अब वो कहता कि ये संख बढ़िया है। दूसरी दुकान पे गया लेने के लिए, तो बोला कि अब तो कोई संख है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जो वो दूसरा पुराने वाला संख था उसको तो उसकी झोली में डाल दिया, और ये नकली संख आया वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन वो तो चला गया। दोस्त ने कहा, हे शंख भगवान, मुझे 10 किलो सोना चाहिए। क्या 10 किलो के 1 टन ले रहे भाई? कि हाँ दीजिए, कि क्या धक्का दूं? अरे ये क्या है? कि ये क्या, मेरा तो यही काम है मुंह से बोलना, देना नहीं है। तो कहा कि तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है डपोल संख। तो तब से डपोल संख बना, खाली खुली खुली बातें करता है, वो कुछ नहीं करता है। क्या साहब जी? तो डपोल संख जो था आ गया, चला गया। तो इस प्रकार से धर्म धीरज मित्र और नारी आपतकाल प्रकहियों चारी। तो जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला है, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में आपके जोड़ा हुआ है, ये सब उस समय उनकी परीक्षा होती है, नहीं तो परीक्षा नहीं होती है। साथ ही साथ अब छोटा सा योग का अभ्यास करा देते हैं, ठीक है ना? कराऊंगा जरूर, वो मैं डपोल संख वाली बात नहीं करूंगा अब। ऑलराइट, सो वन पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ, यू स्टे एट होम, आई गो समवेयर एंड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड गॉड विल गिव मी समथिंग, वट एवर आई विल आस्क गॉड विल गिव एंड आई विल कम एंड बैक। सो he went to the beach, was sitting near the ocean, and he was singing Shiva's name, Namo Shivaya, Namo Shivaya. Shiva appeared, said, Bhakta, my devotee, bless you, what you want? He said, I want money, I want this, I am very poor. So Bhagavan said, okay, I give you these coins. And whenever you want something, tell this coins, make puja, clean, flowers, incense, etc. And then you will prayer and he will give you everything, money, food, cloth, anything. Thank you, Lord. Thank you, thank you. He went. On the way, he had one friend. He stayed overnight there. And what he told the friend, what is this?
So in the night, the friend took away the real coins and put in the fake coins. And then the man went next day, after a few days he reached his village, and he said, village people, now I have a siddhi, perfections, God gave me everything. Now I invite you all for the lunch, a beautiful buffet. So I said, hey Shankadev, oh Lord, please provide the best food for all. And there's nothing happened. Because the real cons, he took it away. So man was disappointed very much and he went again to the ocean, and then Shiva gave him another one, and that one is that whatever you ask to have, if you ask for $1,000, he said, no, take $5,000,000. So you don't have to ask always. So he said, okay, give me please. He said, what? I can't give you anything, I'm only speaking. I'm not giving. Only promising, but there is nothing. So that is in Rajasthan, in Hindustani language, is some kind of a joke. So you know why? Because people are sleeping. And then Swamiji gives such a nice chutkala. Wo chutkala kya hai? Wo bhojan ke andar chutney. Chatpati, chutney kiya, to wo jibha ke andar mein phir swad aa gaya. All right, now exercises. All right? To aap seedha baithe? Very good. Sit straight. Bahut achha, very good. Now, stretch your legs. Bilkul saavdhan, aapko bilkul halka exercise bata raha hun, but it is powerful. Theek hai? So, kursi pe baithe hain, wo kursi pe baithe rahe, ghutne ko jod do. Yes. Or legs little straight out. Pyaro ko thoda lamba kar do. Bahut achha. Inhale and raise your hands up. And interlock your thumbs. Stretch your hands more up to your side muscles. Stretching and hands down. Hand down on the thighs. Once more, inhale and exhale. Inhale. Exhale. Inhale and look up to the ceiling. Exhale. Now inhale and stretch your hand sidewards and above the head. Exhale in the front, hands down. One, inhale. Exhale. Yaad rakhna, bolna mat. Swas lijiye ek aur do. Dusra tha
एक और दो। अब अंगुलियों को कंधे पर रखिए यहां और केहुनियों को ऐसे जोड़ दीजिए और इसको रोटेशन करिए, घुमाए, एक श्वास लीजिए ऊपर कंठ और श्वास छोड़िए।

0: और दूसरी तरफ अब इधर ऊपर से नीचे द सोल्डर ब्लेड शुड टच वेरी गुड बस हैंड्स डाउन तो ये दस दस बार करना है दस बार ऐसे और दस बार ऐसे अब धीरे धीरे ऊपर देखिए श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने थोड़ी को सीना पे लगाइए टच योर एंड कम अप टच द चिन टू द चेस्ट एंड इनहेल अप गुड 10 times श्वास लेना सिर को देखिए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए जालंधर बंद आकाशी मुद्रा और जालंधर बंद बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा अब पैर जो लंबे किए हुए हैं कुर्सी पे बैठे थोड़ा पैर और ऊपर लंबा कर दो और अपने पैरों के अंगूठे और अंगुलियों से इनको ऐसा पकड़ने की कोशिश करो रूमाल को कॉन्ट्रैक्ट योर टोज एंड रिलैक्स द टोज स्लोली कॉन्ट्रैक्ट द टोज एंड रिलैक्स ये इसमें बहुत सर्कुलेशन हो रहा है पैरों के किसी लोगों को एडी में दर्द हो रहा है पैरों में दर्द हो रहा है ये सब चला जाएगा दर्द भग जाएगा कहीं एक दो वन अंगूठा पकड़ो अंगुली पकड़ो सब टू वन टू अब एक स्ट्रेच योर टोज टूवर्ड्स द फ्लोर इन द फ्रंट ऑफ यू एंड इनहेल एक्सहेल एंड इनहेल इसको भी 10 बार इसके बाद पैर अलग अलग और अंगूठों को पैरों के अंगूठों को जोड़ दीजिए अब इसे एक सर्कल बनाइए वन टू थ्री फोर फाइव अदर डायरेक्शन वन टू थ्री फोर फाइव बहुत अच्छा पैरों को जोड़ दीजिए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए एक और धीरे धीरे आगे झुकिए जितना झुक सके अंगूठे पकड़िए पैरों के जितना जा सके और इनहेल श्वास लेते हुए वापस ऊपर और हाथ दोनों नीचे एक श्वास लीजिए दो श्वास निकालिए तीन श्वास लीजिए ऊपर चार श्वास जोड़िए और अब पीछे झुकते हुए मुट्ठी बांधिए जैसे नैया को नाव को चलाते हैं ना एक दो, चार, स्लोली पांच। अब हथेलियों को ऊपर रखिए, द पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हैंड्स नियर द नीज। एक, मुट्ठी बांधिए, खोलिए, दो, यस, नाव को चलाते रहिए, क्योंकि अपने गणपति बापू मौर्या इनको बस समुद्र के अंदर में स्नान कराना है, जल समाधि हो गया बस। हरिओम। जितना धीरे करेंगे उतना फायदा ज्यादा रहेगा, उसका एक उदाहरण बताता हूं। आप का हाथ ऐसे पकड़िए, देखिए अपने हाथ को, देखिए रेखा, देखिए कितनी सुंदर है, वाह। अरे महाराज जी, इसमें तो पैसे पैसे लिखे हुए हैं उनकी रेखा में, अरे वाह। अब इसको बंद करें या खोलें, मुट्ठी को बंद करें और खोलें, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आया। भाई देखो, खाने का बढ़िया हो तब मजा आता, खाने का नहीं तो ठीक है, जंक फूड है, पेट में डालते। क्वालिटी भोजन का वो है, जितना चबाओगे उतना स्वादिष्ट लगेगा, और जंक फूड वो है, जितना चबाओगे तो उल्टी होने लगेगी। इसलिए मुंह कहता जल्दी पेट में डाल दे तू। तो अब ऐसा देखिए हाथ को, लुक टू योर पाम, सीधा बैठो ही, हाँ, नाउ स्लोली क्लोज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, पकड़ दो उसको, होल्ड योर फिस्ट स्ट्रांग एंड विद राइट हैंड होल्ड द रिस्ट, ओके, टाइट द रिस्ट, हाथ पकड़ा हुआ है, स्टे लाइक दिस, एंड नाउ ओनली ओपन द पाम द लेफ्ट हैंड एंड लुक टू योर पाम एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, बट राइट हैंड इज होल्डिंग योर रिस्ट। देखिए आपका हाथ बिल्कुल लुक्स लाइक ए पेल। अब देखिए हाथ को और देखिए, अंगुलियों को देखिए, लुक योर फिंगर्स, लुक योर पाम्स, एंड नाउ रिलीज योर राइट हैंड एंड लुक टू पाम, व्हाट्स हैपनिंग? फर्क पड़ा? अब इस हाथ को और इस हाथ को देखो, कितना फर्क है भाई। अब देखते हैं, इसको भी करेंगे तो ये भी तो नाराज हो जाएगा, रात भर कहेगा कि इसी को क्यों आपने। तो इसको भी ऐसा करके मुट्ठी को बांधिए टाइट, और लेफ्ट हैंड से पकड़ देते हैं हमारे ये हाथ, इसको कलाई को पकड़ लीजिए, रिस्ट को पकड़ लीजिए, स्ट्राइट वेरी टाइट एंड ओपन द पाम एंड लुक टू योर हैंड। बहुत अच्छी रेखा है, भाग्यशाली हो, लंबी उम्र है, पैसे खूब लिखे हुए हैं, लेकिन लिखे हुए कहाँ है, उसको यहां तो लाओ। हाँ, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाम्स एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, एंड नाउ When I say three, one, then you will release. Three, two, one. Oh. हाथ को ढीला छोड़ दो, लाल और लाल इसी में है माल। सो देखिए अब आपके हाथ जो है कितने अच्छे लग रहे हैं। ठंडी में कार को चलाने से पहले हाथों को ऐसा ऐसा कर दीजिए तो गर्म हो जाएगा। यस डू इट लाइक दिस, जो ऐसा करोगे तो क्या था आपके हाथों के अंदर में चमत्कार बता देता हूँ। चमत्कार बता दे वहां क्या आए गए तो महाराज जी थोड़ा बहुत चमत्कार करें। ठीक है चमत्कार को
1: नमस्कार।
0: चलो अब थोड़ा चमत्कार देख लेते हैं। हाथों नाउ मिरेकल, नाउ यू विल हैव ए मिरेकल। यू कैन सिट स्ट्रेट इफ यू वॉन्ट, सिट इन योगा पोस्चर, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, एनी आसन वेर यू फील कंफर्टेबल। अब ये दोनों हाथ जो हमारे हैं, लुक बोथ पाम्स, हाँ दोनों हथेलियों के अंदर में थोड़ी रेखा अलग अलग है। अच्छा एक तरफ तो धन आता है लेकिन दूसरी तरफ वो चला जाता है। अरे हाँ वो तो जाना चाहिए, लक्ष्मी चंचल है। पानी तो चलता भला पड़ा गंदेला होए। वाह भाई वाह। अब ऐसे करिए हाथों को। अब आपके अंगुलियों के ऑन योर टिप ऑफ द फिंगर्स समथिंग इज टिकलिंग, जस्ट लुक लाइक दैट। नाउ आई वॉन्ट दैट यू हैव 1000 times मोर टिकलिंग और लाइक ए नीडल्स गोइंग थ्रू योर पाम्स दैट वी शुड फोल्ड योर हैंड्स, फोल्ड योर हैंड्स एंड नाउ रब द पाम्स

गुड अब ऐसे 1 इंच दूर रखो। अब ऐसा करिए, नीडल मूव होगी नहीं कि नहीं, ऐसा कर रहे हो तो भी कि जैसे सुई नीचे लगी हुई है, और ऐसा करिए धीरे धीरे। वो प्रेशर आता ना, मैग्नेट। और अब क्लोज योर फिस्ट, हैंड्स डाउन एंड कम अगेन अप एंड ओपन पाम। देयर इज नो मैग्नेट, वेज गॉन। सो दिस मीन्स हमारे हाथों का ठंडी वगैरह होती है तो गर्म कर सकते हैं, और अंगुलियां वगैरह सभी दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट है। कहीं पेट में या कंधे पे या कहीं दर्द हो रहा है तो इस सेल्फ हीलिंग पावर करके हम यहाँ रख दें तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, या कहीं दर्द है तो वो हम हमारी एनर्जी को वापस वहां भेजते हैं। तो इनहेल एंड यू गो इन विद द एनर्जी, एक्सहेल and take all the toxins and the pain out, self healing. To bas aaj to itna hi, that's all for today. Session is over, it was 1.5 hours.

0: भगवान की
1: जय।
0: गुड नून, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी, नाइस टू सी यू, ब्यूटीफुल।

0: Day, sunshine.
1: Jó napot, jó reggelt, mindenkit köszöntök, jó látni benneteket, süt a nap.
0: The message is coming from our Yoga and Daily Life retreat in the Vape, Hungary.
1: Üzenetünk a joga mindennapi életben rendszer visszavonulásáról, Vape-ről, Magyarországról jön.
0: In these 2 weeks we have very beautiful programs.
1: Két hét alatt csodálatos programjaink lesznek.
0: The science of yoga, the science of Vedas, and the knowledge of the rishis of the India is unbelievable.
1: A yoga és a védek tudománya, az indiai rishik tudása hihetetlen.
0: It is a science. It has been proved.
1: Ez egy bizonyított tudomány.
0: Unfortunately, this modern way of thinking, modern way of living, etc., is they have forgotten or they lost many things.
1: Sajnos a modern gondolkodás és életmód sok mindent elveszített.
0: We lost and we forgotten the traditions. That tradition means not only that how you are dressing or not dressing.
1: Elveszítettük és elfeledkeztünk a tradíciókról, amely nem az öltözködésünkre vonatkozik.
0: It's called ahar, vihar, achar and vichara. Ahar, the first is the nourishment.
1: Ez a négy, az ahar, a táplálék.
0: Vihar, where you are going, with whom you are.
1: Vihar, hova mész, kivel vagy.
0: And what kind of behavior you are doing.
1: És hogyan viselkedsz.
0: How you are living with someone.
1: Hogyan élsz valakivel.
0: Each and every touch, if you are touching or looking to someone, the energy goes in your body.
1: Minden érintés vagy ránézés átveszi az energiákat.
0: Ahar, vihar, achar and vichara. After comes the vritti, the thoughts.
1: Utána jönnek a vrittik, a gondolatok.
0: So from the food, from the company, from the place where you go, and then according to that the thoughts comes.
1: Étel, a társaság, a hely, ahova mész, meghatározza gondolataid.
0: You have to control your horse.
1: Uralnod kell lovaidat.
0: And we have 10 horses of our senses.
1: 10 ló van az érzékszerveknek.
0: And you have to control them.
1: Ezeket kell uralni.
0: Positively, not negatively.
1: Pozitívan, nem negatívan.
0: But you have to purify your vrittis, your thoughts.
1: Meg kell tisztítani a vrittiket, gondolatokat.
0: That's it. Well, we have here very learned acharya, the pandit.
1: Itt van velünk egy nagyon tanult acharya, pandit.
0: He studies Sanskrit.
1: Sanskritot tanult.
0: And he is one of the best in the Karamkanda.
1: És ő az egyik legjobb a Karamkandában.
0: Now, many you don't know what's Karamkanda.
1: És nem tudjátok, mi ez.
0: We know the karma.
1: Tudjuk, mi az, hogy karma.
0: But what is the kand?
1: És mi az, hogy kand?
0: Kand means disaster.
1: A kand az katasztrófa.
0: If you make karma and kand.
1: Hogyha a karmát és kandot végzel.
0: Or there are different chapters.
1: Vagy vannak fejezetek.
0: So there are many different things.
1: Különböző dolgok vannak.
0: So our Acharya Triveda Kapila.
1: Acharya Triveda Kapila.
0: Is with us.
1: Itt van velünk.
0: And I think he should tell about something, the Karamkand.
1: Elmondja, mi az a Karamkand.
0: And the effect.
1: És annak hatásai.
0: Of the ceremonies, pujas, which is very ancient science.
1: Puják és a ceremóniák következményeit, amelyek nagyon régi tudományok.
0: Welcome all of you, and welcome our dear Kapil Trivedi Panditji.
1: Köszöntelek benneteket, és Kapil Trivedi Panditjit.
0: Yes, Panditji, you are on the line. Floor is yours.
1: Panditji, tiéd a szó. So.
2: Sabse pratham, Gurudev ke charanon mein shat shat vandan, दीपनारायण भगवान की जय सदगुरु देव की जय। आपका और हमारा सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक भगवान का पूजन यजन यज्ञ वगैरह करने के लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जीवन के अंदर होने वाले सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए, सभी प्रकार के पापों के निवारण के लिए आप और हम सब ने इस मनुष्य जीवन के अंदर जो मनुष्य अवतार प्राप्त किया है, इस मनुष्य अवतार को धन्य बनाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब आपने मनुष्य योनि प्राप्त करी है, उस योनि का उद्धार के लिए ऐसे गुरु के चरण में आप और हम सब उपस्थित हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और आपको और हम सबको एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आप और हम सब भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं, ऐसा आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। तो गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन प्रणाम। गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यज्ञ हवन पूजन से आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है। आप और हम सब जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के चरण में जाते हैं, गुरुदेव की शरण में जाते हैं,
0: नाउ वी डोंट नो एनीथिंग, वी वेर ओनली लिसनिंग टू योर वॉइस। अनुवाद करता हूं। सो द पंडित जी सेठ,
1: पंडित जी आसमंता,
0: फर्स्ट ऑफ द एडोरेशन टू अवर गुरु परंपरा गुरुदेव,
1: गुरु परंपरांक फेजते ki tiszteletét.
0: Then said, we are all blessed one.
1: Te mondta, hogy mind áldottak vagyunk.
0: That we are all here together.
1: Együtt lehetünk itt.
0: And that we are here in the shelter of the Gurudev.
1: Hogy Gurudev hajlékában lehetünk.
0: Same time that he mentioned about 8.4 million different kind of lives.
1: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
0: But finally we got a human life.
1: És annak a végén az emberit.
0: Human life should be very pure.
1: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
0: You have to come to the God as pure you were.
1: Tisztán kell jönni Istenhez.
0: So he said, we are lucky.
1: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
0: And we are going to have some havan, yagya, puja.
1: Havanát, yagyát, pujat fogunk gyakorolni.
0: And so let's go what he said in short sentences. ठीक है, थोड़ा बोलना ताकि पूरा बताएं।
2: आप और सब हम सब यज्ञ और हवन पूजन के बारे में जानेंगे। यज्ञ को करने से परमात्मा के बहुत ही नजदीक आप और हम सब पहुंच सकते हैं।
0: While making the yagya,
1: yagyát végzünk,
0: ceremonies, we will have a easy access to God.
1: Ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
2: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सबको दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है। अगर उस पूजन को, उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से, सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती हैं।
0: इन लाइफ मेनी टाइम्स देयर इज अप एंड डाउन,
1: életben सोकसोर फे és लेफेले szállunk.
0: There are different circumstances, different kind of situations.
1: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
0: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
1: Yagyák és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
2: ये एक प्रकार का विज्ञान है यज्ञ कुंड की जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए और साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं
0: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस
1: टू द मैन
0: वैदिक साइंस
1: वैदिक उस टू द मैन
0: अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र एज I told before, he mentioned.
1: A vastu sastra szerint, ahogy ezt korábban mondtam.
0: Exactly the yagya ceremony must be done in proper measurement.
1: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
0: And in the proper scale. East, west, north, south.
1: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
0: And that fireplace for the Yagya is like the mouth of the god.
1: Yagya tűzhely az olyan mint Isten hegye.
0: And what the mantras is coming like from that supreme.
1: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
0: And how you will think and you will offer your ceremonies there that will become fruitful for you, liberating you.
1: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
2: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं, वो मंत्रों के अधीन हैं. मंत्र जो हैं, वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन हैं. अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है सनातन है और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है
0: द स्क्रिप्चर्स द वेदास उपनिषद एक्सेट्रा देयर मंत्रास which influences the devas
1: iratok vedák upanishadok mantrái hatnak a devákra
0: invite them
1: behívja őket
0: and these mantras these ceremonies is perfection by those scholars so called the pandit
1: mantrák ceremóniák olyan tudósok, akiket panditoknak hívunk, azoknak a munkái.
0: Through their perfection, the devas, through these mantras which will be chanted, devas have to come from the astral world or heaven or whatever you call, to that place where the yagya is.
1: Az ő tökéletes munkájuk által a déváknak el kell jönniük a mennyországból vagy az asztrális síkról arra a helyre, ahol a jagja van.
0: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
1: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
0: So this is not only just what we call a mantra chanting, it is the science, it is Sanatan.
1: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, Sanatan.
0: It is eternal.
1: Örök.
0: Unchangeable.
1: Megváltoztathatatlan.
0: It is the truth.
1: Az igazság.
0: Is that scriptures?
1: Ez van az iratokban.
0: That granthas.
1: A grantákban.
2: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है. आप अगर एक आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है. ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है. तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहां पर आए हुए हैं तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें. ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है.
0: सो सच ए अपॉर्चुनिटी, सच ए ओकेशन, सच ए सिचुएशन that such environment creates where this puja takes place. But if there is the presence of the Sadguru Dev, then one mantra's benefit appears to the aspirant 100,000 times more, not only once or twice. The one mantra, one ahuti, one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes your witness. And one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
1: Az már önmagában
0: it is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
1: Tehát a rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Sadguru Dev jelen van, akkor egy mantra egy ahot kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Sadguru Dev tanulja a mantrádnak.
2: Egy mantra ke madhyam se main apni vaani ko viram dena chahunga.
0: With his one mantra chanting, he is going to finished his speech.
1: Egy mantra zengetésével fogja befejezni.

कृपा। ध्यान करने के योग्य गुरु जी की प्रतिमा है, गुरु जी की मूर्ति है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण हैं, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन है, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम और मोक्ष के समान, मतलब इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान गुरु की जो कृपा है, वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मैं अपनी वाणी को इन मंत्र के माध्यम से गुरु चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। आप सब एक बार बोलिएगा सद

0: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुत।
1: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
0: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
0: एडोरेशन
2: वोदोलात
0: ग्लोरी
2: दिचोइतेश
0: टू डिवाइन मदर
2: दिष्टनी अन्यानक।
1: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ये स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं। मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।

ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।

0: अनंत ब्रह्मांड की रचयिता, सृष्टि के पालन करता, घट घट में रहने वाले पर ब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय पूज्यपाद, प्रातःस्मरणीय हमारे घनिष्ठ मित्रों में, हमारे घनिष्ठ प्रिय गुरु भाई और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्री हरिचंद्र जी महाराज की परम कृपा से आज हमारा यहां आना हुआ। पूज्य स्वामी जी की कृपा से हम सभी लोगों को, जो विशेष करके भारत से आए हुए हैं, अभाग्यशाली हैं कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय पूज्यपाद का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। आपका बहुत प्रेम है और प्रेम ही सबसे बड़ा है। प्रेम छुपाया न छुपे, प्रेम करे प्रकाश, दाबी दुबी रहे नहीं कस्तूरी की बास। तो प्रेम कभी छुपता नहीं। तो उसी प्रेम के साथ में, उसी प्रेम वाणी से आज हम कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे योग के बारे में। पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री ने योग की महिमा गागर में सागर भर दिया। योगा कर्म सुकौशलम, योगा अग्नि कर्म दग्धानी। योग के बिना मानव का जीवन सफल नहीं होगा। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, गुड इवनिंग। आई हैव टू स्पीक नाउ लिटिल बिट इन इंग्लिश बिकॉज अवर भक्तास फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम विथ मी एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो वुड लाइक टू हियर व्हाट आई एम telling or talking. You all speak English very good because you live in America. And Swamiji need not to understand because he is in his inner dhyan mein sab kuch mil jata hai. He knows what I am saying, that's enough. Theek hai na?
1: Perfect.
0: और उसमें अगर हम कुछ गलती करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे लिए समथिंग, थैंक यू। योगा, योगा कर्म सुकौशलम, कर्म के द्वारा हम योग की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराजा भर्तरी, व्हेन ही बिकेम ए सन्यासी, ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग। देन ही सेड, आई वुड लाइक टू पे माय रिस्पेक्ट टू ऑल देवास, ऑल गॉडेस, बट देन ही सेड, बट ऑल द देवास, ऑल द गॉडेस, दे are bounded by karma. Okay, then I will pray to God, Brahma, Vishnu, etc. Then he said, Bhagwan, jinhone avatar liya hai, two kinds of incarnation, Nimit and Nitya. So why should I not pray to the God? Then he said, no, God is also bounded by karma. Shashi dalaraha, shame dalaraha, Lakshman ki pran jaraha, Hanuman kab aoge,

ऐसे मन जो है संकल्प विकल्प करता रहता है, यही मन का धर्म है, क्योंकि मन चंद्र से मिला हुआ है. एंड मून मीन्स इमोशन. इन मोशन यू आर ऑल द टाइम्स इन द मोशन. इमोशन एंड इमोशन मीन्स वाटर. सो चंद्र जो है पानी का प्रतीक है, और वो जल जो है पानी वाटर, वो वाटर इज चंचल मूविंग, देर आर द वेव्स. सो यू आर इन द मोशन इज द इमोशन. बट व्हाट काइंड ऑफ मोशन यू हैव, सम टाइम इज ए हॉरिकन, और वाह फ्लड. राजा योगी अग्नि जल, जिसकी उल्टी रीत. राजा योगी अग्नि जल जिसकी उल्टी रीत. सावधान से परशुराम जी कह रहे हैं कि थोड़ी देखे प्रीत, इनसे आप ज्यादा दोस्ती मत करना. राजा भी ठीक है, कभी होते होते वो लगा देता लात. हाँ वो नेता होता है ना, नेता तो टिकट की समय तो आएंगे, हाँ बाबूजी कैसे हो, भाई साहब कैसे हो, ऐसे है. जीत गया उसके बाद तो हाथ नहीं मिला था, क्या टेलीफोन भी नहीं मिला था. ये बातें होती है. माइंड. नाउ व्हाट इज द माइंड. सो माइंड हमारा जो है, माइंड इज लाइक ए कैमरा. इज गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफरिंग टू द सबकॉन्शियस. एंड व्हाट इज द हिडन रिटन इन द सबकॉन्शियस ब्रिंग्स अप एंड गिव्स टू द कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट, बुद्धि. एंड व्हाट इज ए बुद्धि. बुद्धि का धर्म क्या है. बुद्धि का धर्म है उसका जजमेंट देना. सो इंटेलेक्ट गिव्स द जजमेंट एंड माइंड ब्रिंग्स एंड गोज. देयरफॉर माइंड हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज ओनली कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग. दैट इज अ माइंड. इंटेलेक्ट इज गिविंग जजमेंट, बट विवेका दैट इज विच लीड्स अस फर्दर. सो योगा आसनास प्रणायाम चक्रास मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु और सहस्रार, दिस आर द एट चक्रास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी. तो योग अनंत है. अनंत हरि कथा. साथ में आता है आसन. आसन प्राणायाम ध्यान धारणा. तो आसन कई प्रकार के आसन कहलाते हैं. ये महाराज श्री का जो ये गद्दी बिछी हुई है इसको भी आसन ही कहते हैं. महाराज जी आपके आसन पे बैठिए वो भी आसन है. आपका आसन कहां लगेगा, रात को सहन कहां करोगे, वो भी आसन है. और पोस्चर्स जो है वो भी आसन है. आसन की परिभाषा बहुत कुछ है, लेकिन मेडिटेशन करते समय काया स्थैर्यम, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, फिर मेडिटेशन होता है. ये गिलास पड़ी है, गिलास के अंदर पानी है, गिलास स्थिर है, पानी भी स्थिर है. गिलास इज मोशनलेस, द लिक्विड इनसाइड इज ऑल्सो मोशनलेस. But as soon as I take, glass is moving, liquid is moving. Similarly, if our body is comfortable and motionless, our mind is also steady. Sankalp viklap ke andar mein dheere dheere dheere dheere dheere dheere aata jata hai, phir meditation ho jata hai. So that's a long way. Asana. अब आपको थोड़ा सा बता दूंगा, नहीं तो स्वामी जी कहेंगे बाबा जी को माइक दिया और पता नहीं कब तक पकड़े रहेंगे.

0: तो अब बस हो गया पूरा। धीरे से आपको कुछ बताता हूं, सभी बैठे हैं। अरे आए तो खाली बातें करने से कोई भूख थोड़ी मिलती है, मिटती है भूख, मिटते क्या बातों से भूख नहीं मिटती है, बात करने से पेट नहीं भरता है। टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग, टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग कंपेयर्ड विद द ग्रेन ऑफ प्रैक्टिस। तो खाली बातें करते जाओ, बातें करते जाओ, पेट नहीं भरेगा। अरे कुछ खाने को तो दो, एक भी चना दे दो तो कम वो पेट में जाएगा, तो कम से कम वो तो थोड़ा काम करेगा ही। भूखे को बताते जाओ कि हाँ श्रीखंड आ रहा है, ओहो हलवा आ रहा है, पूड़ी आ रही है, और क्या आ रहा है, अरे समोसे आ रहे हैं, लड्डू आ रहे हैं, अरे जलेबी भी बन रही है। वो भूखे के बेचारे के पेट के अंदर में आवाज हो रही है बादल की तरह, लेकिन आया क्या, कुछ नहीं आया। डपोट संघ का नाम सुना आपने? आप लोगों ने डपोट संघ का नाम सुना? महाराज जी आपने सुना?
1: नहीं अभी तक नहीं सुना,
0: सुना दूं? हाँ देखिए ये भी तो बात है, हमारे मारवाड़ में, गुजरात में, हिंदुस्तान में कहते हैं डपोट संघ, कावद है कि नहीं? तो डपोट संघ की बात कर देता हूं, फिर आपको फिर प्रैक्टिकल दे दूंगा, ठीक है? एक आई एम ट्रेलिंग इन हिंदी, ओके, सो दैट आफ्टर यू विल आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम, सो टू क्रॉस आई विल मेक समथिंग कॉमेंट्री वेरी क्विकली सो यू विल अंडरस्टैंड। एक गरीब आदमी था, गरीब था, काम तो करता है लेकिन पैसे इतना नहीं मिलता है। तो उसकी पत्नी को उसने कहा कि आप ऐसा करो, यहां जो कुछ ये पैसे देता हूं काम करना, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरे को बहुत कुछ पैसे दे देंगे। समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का प्रार्थना कर रहा है, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव जी तो भोलेनाथ है ना, सबसे जल्दी वरदान कौन देता है? शिव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः,

ओह शंकर भगवान प्रकट हो गए जल के अंदर। बोलो भक्त क्या चाहिए? कि आप अगर शिव जी हैं तो आप अंतर्जामी सब कुछ जानते, मेरे को क्या कहते हो कि क्या चाहिए? प्रभु दे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूं और आप देने के लिए प्रकट हुए हो। अच्छा भक्त, तू मेरा भक्त है, ये शंख लेके आया हूं। ये शंख इतना चमत्कारिक है, ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, हे दीन दयाल, क्या कहना है? आपकी माया, शंकर भगवान महादेव की माया है ये, क्या करेगा ये? अरे भगत, इस शंख की पूजा करना, गंगा जल से धो लेना या पानी से, कुएं का पानी से धो लेना, और अगरबत्ती लगाना, फूल पुष्प चढ़ाना, और फिर कहना कि हे शंकरदेव, मेरे को 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 1000 रुपये का नोट आ जाएगा। हे शंकरदेव, मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है, तो हमारे सभी के लिए बना बनाया कैटरिंग आ जाए, जैसे आ जाएगा। तो कहा कि हाँ वो आ जाएगा, कि हे प्रभु कृपा कर दी, कपड़े भी मंगा देंगे, सोना दागिना भी मिला, सब जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा बेटा। बस प्रभु यही चाहता था। भगवान शिव अदृश्य हो गए, और क्या हुआ कि वहां वो शंख लेकर के गांव की तरफ, घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते 4-5 दिन के बाद, आइए 4-5 दिन के बाद में कोई गांव आया, उसके बाद दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मित्र। भाई देखो, कभी परीक्षा जब भी होती है कि मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं। हमारे ग्रंथों में कहा है, धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकहियों चारी। धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकहियों चारी। और एक मित्र की परीक्षा जब होती है, नारी की परीक्षा जब होती है, धीरज की परीक्षा जब होती है, कि हम किसी न किसी संकट में है, तो दोस्त के वहां गया। तो दोस्त कहा, अरे भाई बहुत समय से आए, क्या बात है, कहां चले गए थे? कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव मिल गए। अच्छा, शंकर दादा मर गया क्या? मर गया बापू, तो निशु गया शंकर दादा, निशु कहिए लाडवा खवाड़े शंकर दादा बहू। अच्छा, अरे ऐसे ही है, देवी देवता क्या करते हैं, देंगे हैं क्या? अरे शंख दिया है कि बताओ। हे शंख भगवान, हमारे मित्र के घर के अंदर सभी मिलकर के 8 और मैं 9, सभी के लिए अच्छा बढ़िया ताजा स्वप्न भोग थाल में पुरसा हुआ लेके भिजवा दीजिए। आ गया। अरे वाह, कपड़े मंगा दिए, आ गए। 50,000 मेरे मित्र को देना चाहता हूं, आ गए। मित्र कहता कि हाँ भाई, ये तो चमत्कारिक चीज आ गई। भोजन किया, सो गए। अब वो रात को नींद नहीं आ रही, किसको? मित्र को, कि मैं कैसे करके उस शंख को मैं ले लूं। गया दूसरे दोस्त के पास, कहीं रात को दुकान पे गया और एक इतनी साइज का एक शंख लेके आ गया। आकर के वो थका थका था वो भगत, तो क्या किया उसने कि उसकी थैली में से वो असली शंख को तो निकाल दिया, और वो जो नकली से लेकर आया उसको उसके धोझोली में डाल दिया। 10-20 घर का वहां शंकर भगवान के दिया हुआ शंख को वहां टेबल पे रख करके पूजा करी। हे शंख भगवान, हमारे भाई बहन जितने सभी खड़े मेरे गांव के, सभी को पहले भोजन करा दो। कुछ नहीं। अरे शंख भगवान, कराओ ना, क्या कराए? और वो इतना निराश हो गया, वहीं से शंख को लेकर के गया समुद्र के किनारे, और शंकर भगवान को कहा, ये तेरा शंख मुझे नहीं चाहिए।
भगवान शिव ने कहा, अरे मेरा भगत, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, भगवान नहीं चाहता कि भगत दुखी हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, वापस बोला, हे भगवान भगत, क्या मुझे नहीं चाहिए आपका शंख? अरे बेटा, तेरा शंख वो चुरा गया तेरा दोस्त, असली उसके पास है, नकली अंदर डाल दिया। तो मैं क्या करूं अब? क्या करे क्या, मैं दूसरा शंख देता हूं। अरे वो क्या करता है शंख? अरे उसमें तो चमत्कार डबल है बेटा, कि वो क्या है भगवान, कि मांगना 1000 रुपया तो वो कहे 1000 से क्या 1 करोड़ ले लो ना, अभी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, लेके जाओ, लेकिन सावधान, देता कुछ नहीं है, वो केवल बोलता है। शंख बोलता है 1000 रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये ले लो, 1 ड्रेस की जगह वो कहता 10 ड्रेस ले लो, कि लाओ देओ, कि क्या धक्का दे, धक्का को समझते हो, किसी को धक्का देना ना, अरे तू क्या नहीं दे रहा है कि नहीं, मेरा नाम है डपोल शंख। अब वो लेके गया वापस दोस्त के पास, गया रात्रि विश्राम किया। अरे दोस्त का कैसे आ गया इतना जल्दी? बोला कि भाई इस बार तो एक चमत्कारिक चीज और मिल गई। अरे वो क्या है? अरे मांगे 1 और दे अनेक, कि यह ऐसे कैसे हो सकता है, कि देखिए हे शंख भगवान, आज हमारे घर के अंदर 10 किलो सोना आ जाए। तो भगवान शंख देव कहते, अच्छा भक्त आशीर्वाद है, लेकिन 10 किलो से क्या होगा, 1 टन सोना ले लेना, ले जाओ, 10 सोना आ जाएगा, कि बस बस बस बस इतना ही चाहता था भगवान, उसको दे दिया। अब वो कहता कि ये शंख बढ़िया है। दूसरी दुकान पे गया लेने के लिए, तो बोला कि भाई अब तो कोई शंख है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जो वो दूसरा पुराने वाला शंख था उसको तो उसकी झोली में डाल दिया, और ये नकली शंख आया वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन वो तो चला गया। दोस्त ने कहा, हे शंख भगवान, मुझे 10 किलो सोना चाहिए। क्या 10 किलो के 1 टन ले दे भाई? कि हाँ दीजिए, कि क्या धक्का दूं? अरे ये क्या है, कि ये क्या, मेरा तो यही काम है मुंह से बोलना, देना नहीं है। तो कहा कि तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है डपोल शंख। तो तब से डपोल शंख बना, खाली खुली खुली बातें करता है, वो कुछ नहीं करता है, क्यों साहब जी? तो डपोल शंख जो था आ गया, चला गया। तो इस प्रकार से धर्म धीरज मित्र और नारी आपतकाल प्रकहियों चारी। तो जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला है, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में आपके जोड़ा हुआ है, ये सब उस समय उनकी परीक्षा होती है, नहीं तो परीक्षा नहीं होती है। साथ ही साथ अब छोटा सा योग का अभ्यास करा देते हैं, ठीक है ना? कराऊंगा जरूर, वो मैं डपोल शंख वाली बात नहीं करूंगा अब। ऑलराइट, सो वन पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ, यू स्टे एट होम, आई गो समवेयर एंड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड गॉड विल गिव मी समथिंग, वट एवर आई विल आस्क गॉड विल गिव एंड आई विल कम एंड बैक। सो he went to the beach, was sitting near the ocean, and he was singing Shiva's name, Namo Shivaya, Namo Shivaya. Shiva appeared, said, Bhakta, my devotee, bless you, what do you want? He said, I want money, I want this, I am very poor. So Bhagavan said, okay, I give you these coins. And whenever you want something, tell this coins, make puja, clean, flowers, incense, etc. And then you will prayer and he will give you everything, money, food, cloth, anything. Thank you, Lord. Thank you, thank you. He went. On the way, he had one friend. He stayed overnight there. And what he told the friend, what is this?
So in the night, the friend took away the real coins and put in the fake coins. And then the man went next day. After a few days, he reached his village and he said, village people, now I have a siddhi, perfections. God gave me everything. Now I invite you all for the lunch, a beautiful buffet. So I said, hey Shankadev, oh Lord, please provide the best food for all. And then nothing happened. Because the real cons, he took it away. So man was disappointed very much and he went again to the ocean, and then Shiva gave him another one, and that one is that whatever you ask to have, if you ask for $1,000, he said, no, take $5,000,000. So you don't have to ask always. So he said, okay, give me please. He said, what? I can't give you anything, I'm only speaking. I'm not giving. Only promising, but there is nothing. So that is in Rajasthan, in Hindustani language, is some kind of a joke. So you know why? Because people are sleeping. And then Swamiji gives such a nice chutkala. Wo chutkala kya hai? Wo bhojan ke andar chutney. Chatpati, chutney kya, to wo jibha ke andar mein phir swad aa gaya. All right, now exercises. All right? So, aap seedha baithe? Very good. Sit straight. Bahut achha. Very good. Now, stretch your legs. Bilkul saadhan, aapko bilkul halka exercise bata raha hoon, but it is powerful. Theek hai? So, kursi pe baithe hain, wo kursi pe baithe rahe, ghutne ko jod do. Yes. Or legs little straight out. Pairon ko thoda lamba kar do. Bahut achha. Inhale and raise your hands up. And interlock your thumbs. Stretch your hands more up. So your side muscles stretching, and hand down on the thighs. Once more, inhale and exhale. Inhale exhale. Inhale and look up to the ceiling. Exhale. Now inhale and stretch your hand sidewards. And above the head. Exhale in the front, hands down. One, inhale. Exhale. Yaad rakhna, bolna mat. Swas lijiye, ek aur do. Dusra tha,
एक और दो। अब अंगुलियों को कंधे पर रखिए यहां और केहुनियों को ऐसे जोड़ दीजिए और इसको रोटेशन करिए घुमाए, एक श्वास लीजिए ऊपर कंठ और श्वास छोड़िए।

और दूसरी तरफ अब इधर ऊपर से नीचे द सोल्डर ब्लेड शुड टच वेरी गुड बस हैंड्स डाउन तो ये दस दस बार करना है दस बार ऐसे और दस बार ऐसे अब धीरे धीरे ऊपर देखिए श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने ठुड्डी को सीना पे लगाइए टच योर एंड कम अप टच द चिन टू द चेस्ट एंड इनहेल अप गुड 10 टाइम्स श्वास लेना सिर को देखिए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए जालंधर बंद आकाशी मुद्रा और जालंधर बंद बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा अब पैर जो लंबे किए हुए हैं कुर्सी पे बैठे थोड़ा पैर और ऊपर लंबा कर दो और अपने पैरों के अंगूठे और अंगुलियों से इनको ऐसा पकड़ने की कोशिश करो रूमाल को कॉन्ट्रैक्ट योर टोज एंड रिलैक्स द टोज स्लोली कॉन्ट्रैक्ट द टोज एंड रिलैक्स ये इसमें बहुत सर्कुलेशन हो रहा है पैरों के किसी लोगों को एडी में दर्द हो रहा है पैरों में दर्द हो रहा है ये सब चला जाएगा दर्द भग जाएगा कहीं एक दो वन अंगूठा पकड़ो अंगुली पकड़ो सब टू वन टू अब एक Stretch your toes towards the floor in the front of you and inhale. Exhale and inhale. इसको भी 10 बार इसके बाद पैर अलग अलग और अंगूठों को पैरों के अंगूठों को जोड़ दीजिए अब इस एक सर्कल बनाइए वन टू थ्री फोर फाइव अदर डायरेक्शन वन टू थ्री फोर फाइव बहुत अच्छा पैर पैरों को जोड़ दीजिए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए एक और धीरे धीरे आगे झुकिए जितना झुक सके अंगूठे पकड़िए पैरों के जितना जा सके और इनहेल श्वास लेते वापस ऊपर और हाथ दोनों नीचे एक श्वास लीजिए दो श्वास निकालिए तीन श्वास लीजिए ऊपर चार श्वास जोड़िए और अब पीछे झुकते हुए मुट्ठी बांधिए जैसे नैया को नाव को चलाते हैं ना एक
दो, चार, स्लोली पांच। अब हथेलियों को ऊपर रखिए, द पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हैंड्स नियर द नीज। जो एक,

मुट्ठी बांधिए, खोलिए, दो, यस, नाव को चलाते रहिए, क्योंकि अपने गणपति बापू मौर्या इनको बस समुद्र के अंदर में स्नान कराना है, जल समाधि हो गया बस। हरिओम। जितना धीरे करेंगे उतना फायदा ज्यादा रहेगा। उसका एक उदाहरण बताता हूं। आप का हाथ ऐसे पकड़िए, देखिए अपने हाथ को, देखिए रेखा, देखिए कितनी सुंदर है। वाह, अरे महाराज जी, इसमें तो पैसे पैसे लिखे हुए हैं उनकी रेखा में। अरे वाह, अब इसको बंद करें और खोले, मुट्ठी को बंद करें और खोले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आया। वह देखो, खाने का बढ़िया हो तो मजा आता, खाने का नहीं तो ठीक है, जंक फूड है, पेट पेट में डालते। क्वालिटी भोजन का वो है, जितना चबाओगे उतना स्वादिष्ट लगेगा, और जंक फूड वो है, जितना चबाओगे तो उल्टी होने लगेगी। इसलिए मुंह कहता जल्दी पेट में डाल दे तू। तो अब ऐसा देखिए हाथ को, लुपटिया पान सीधा बैठो हुई, हाँ, नाउ स्लोली क्लोज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, पकड़ दो उसको, होल्ड योर फिस्ट स्ट्रांग एंड विद राइट हैंड होल्ड द रिस्ट, ओके, टाइट द रिस्ट, हाथ पकड़ा हुआ है, स्टे लाइक दिस, एंड नाउ ओनली ओपन द पाम द लेफ्ट हैंड एंड लुक टू योर पाम एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, बट राइट हैंड इज होल्डिंग योर रिस्ट। देखिए आपका हाथ बिल्कुल लुक्स लाइक ए पेल। अब देखिए हाथ को और देखिए, अंगुलियों को देखिए, लुक योर फिंगर्स, लुक योर पाम्स, एंड नाउ release your right hand and look to palm, what's happening? फर्क पड़ा? अब इस हाथ को और इस हाथ को देखो, कितना फर्क है भाई। अब देखते हैं, इसको भी करेंगे तो ये भी तो नाराज हो जाएगा, रात भर कहेगा कि इसी को क्यों आपने। तो इसको भी ऐसा करके मुट्ठी को बांधिए टाइट, और लेफ्ट हैंड से पकड़ देते हैं हमारे ये हाथ, इसको कलाई को पकड़ लीजिए, रिस्ट को पकड़ लीजिए, स्ट्राइट वेरी टाइट एंड ओपन द पाम एंड लुक टू योर हैंड। बहुत अच्छी रेखाएं हैं, भाग्यशाली हो, लंबी उम्र है, पैसे खूब लिखे हुए हैं, लेकिन लेके हुए कहाँ है, उसको यहां तो लाओ। हाँ, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाम्स एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, एंड नाउ व्हेन आई से थ्री वन देन यू विल रिलीज, थ्री टू वन, हाथ को ढीला छोड़ दो, लाल और लाल इसी में है माल। सो देखिए अब आपके हाथ जो है कितने अच्छे लग रहे हैं। ठंडी में कार को चलाने से पहले हाथों को ऐसा ऐसा कर दीजिए तो गर्म हो जाएगा। यस, डू इट लाइक दिस, जो ऐसा करोगे तो क्या था, आपके हाथों के अंदर में चमत्कार बता देता हूँ, चमत्कार बता दे, वहां क्या आएगी तो महाराज जी थोड़ा बहुत चमत्कार करें, ठीक है, चमत्कार।

0: मार्गो
1: नमस्कार। चलो अब थोड़ा चमत्कार देख लेते हैं। आ तो नाउ मिरेकल, नाउ यू विल हैव ए मिरेकल। यू कैन सिट स्ट्रेट इफ यू वांट, सिट इन योगा पोस्चर, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, एनी आसन, वेर यू फील कंफर्टेबल। अब ये दोनों हाथ जो हमारे हैं, लुक बोथ पाम्स, हाँ दोनों हथेलियों के अंदर में थोड़ी रेखा अलग अलग है। अच्छा, एक तरफ तो धन आता है लेकिन दूसरी तरफ वो चला जाता है। अरे हाँ, वो तो जाना चाहिए, लक्ष्मी चंचल है। पानी तो चलता भला, बड़ा गंदेला होए। वाह भाई वाह। अब ऐसे करिए हाथों को, अब आपके अंगुलियों के ऑन योर टिप ऑफ द फिंगर्स समथिंग इज टिकलिंग, जस्ट लुक लाइक दैट। नाउ आई वॉन्ट दैट यू हैव 1000 times मोर टिकलिंग और लाइक ए नीडल्स गोइंग थ्रू योर पाम्स, दैट वी शुड फोल्ड योर हैंड्स, फोल्ड योर हैंड्स एंड नाउ रब द पाम्स

Very good. अब ऐसे 1 इंच दूर रखो. अब ऐसा करिए, नीडल मूव होगी नहीं कि नहीं, ऐसा कर रहे हो तो भी कि जैसे सुई नीचे लगी हुई है. और ऐसा करिए धीरे धीरे. वो प्रेशर आता है ना, मैग्नेट. और अब क्लोज योर फिस्ट, हैंड्स डाउन एंड कम अगेन अप एंड ओपन पाम. देयर इज नो मैग्नेट, वेज गॉन. सो दिस मीन्स हमारे हाथों का ठंडी वगैरह होती है तो गर्म कर सकते हैं, और अंगुलियां वगैरह सभी दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट है. कहीं पेट में या कंधे पे या कहीं दर्द हो रहा है तो इस सेल्फ हीलिंग पावर करके हम यहाँ रख दें तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा. या कहीं दर्द है तो वो हम हमारी एनर्जी को वापस वहां भेजते हैं. तो इनहेल एंड यू गो इन विद द एनर्जी, एक्सहेल and take all the toxins and the pain out. Self healing. To bas aaj to itna hi. That's all for today. Session is over. It was 1.5 hours.